जोजोलपा थौ नेपाल सम्बन्ध चिन्छ सौ पी खुद तसलगा एकादशी थो रेडियो नेपालको अन्य दिशा जिरुबी पाके नेपाल भाषा या समाचार प्रतिनिधि सभा मिग या बैठके थिथी सङ्घु निकाय या दक्ष प्रतिवेदन दूत अभिगुदु बैठके प्रधानमन्त्री वरेन्द्र शाह तथा संघ कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सुविता गौतम निर्वाचन आयोगका झिङ गुकगु दमु ज्याया प्रतिवेदन 2081-82 राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद या चक्कको प्रतिवेदन 2081-82 व राष्ट्रिय महिला आयोगका झिन चक्कको दक्ष प्रतिवेदन 2081-82 सदन नापा दुत व्यादिगुदु अध्ययन मिगया बैठके प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह यथा संघ कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सुविता गौतम दिगु राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक 2083 दथि बिचाइया माध्यमको प्रस्ताव स्वीकृति अगुदु थ्यान प्रतिनिधि सभा मिगया बैठक के ई फना नुवासे गृहमन्त्री सुदन गुरुङ आत्मा दह लिपा सीमा मुखिया गणेश नेपाली वासव जीवन रक्षा नितिन सरकार थगुथा सम्फकको कुतयना गु तर तामला गु धया दिल गृहमन्त्री गुरुङ वासा नीति भारत छेत एकको कुतयागु जुसाना चिकित्सक ते गु सल्लाह सुझाव कथा हात्या मोयके गु नीति दिनागु धया दिलसा सङ्घु तहया सरकार मध्ये निगु तहया सरकार प्रतिपक्षीय दलया नेतृत्व दुगु नेतना दिसे गृहमन्त्री गुरुङ मनुते गु मृत्यु स राजनीति मयता विपक्षी दल नापाइ नापेना दिल गृहमन्त्री गुरुङ गणेश नेपाली सी गु प्रकरण या त दुवाले त प्रहरी नायब महानिरीक्षक गोविन्द थपलिया या समय जगत यहाँमा दुजया छानबिन समिति निसोना गु व सोमा नगर प्रहरी या त नियन्त्रण कया गु सदन या त जानकारी याका दिगुदु राष्ट्रिय सभाया मिगया बैठके सांसद पी नापा नेसली स यागु झोले कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरी जलवायु नीति स मिसा आदिवासी जनजाति मधेसी दलित उत्पीडित अपाङ्गता जुपी मनु व ल्यामतेगु समान बोती व न्यायपूर्ण अधिकार सुनिश्चित यागु बचाउ पङ्का दिगुदु प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कोछिना यायगु थासे मिसा व विपन्न वर्ग अर्थपूर्ण बोती नीति सन्दुथ्या के गु विशेषण जानकारी व्यादिसे मन्त्री चौधरी राष्ट्रिय अनुकूल योजना न लैङ्गिक सहभागिता व समावेशिता या ज्याचो कोछिगु जानकारी व्यादिल थोया निहया बैठके आकाङ्क्षा कहाँ सुन्य इले सांसद तेस गणेश नेपाली वास्या झोले सिगु झाका या विशेषण सत्य तथ्य दुवाला दोषी या त छक्क कारवाही या त सरकार नापा इनाफिया गुदुसा ये महानगरपालिका राहदानी ये महानगरपालिका या राहदानी विभाग निहने आत्मा दह या कुतलिपा वास्या झोले सीमा गणेश नेपाली मधुगुलिताको या दुःख पङ्क गुदु महानगर या प्रवक्ता नवीन मानन्दराम प्रेस विज्ञप्ति पिथासे थो झाका या त कया महानगर छे ज स्तब्ध जुयागु मुगु जिल्ला छे दुमा व आ खोपचुनीमा नेपाली असार 25 गते त्रिपुरेश्वरी दुगु राहदाने विभाग न्याने आत्मा दह या कुत यनादिगु ख वा स्याझोले मिगन हिने नेपाली मधुगु ख वेक मधुगुलिता कया महानगरपालिका शोक कपी छेज दती विचाहक गुदु प्रवक्ता मानन्दरन थो झाका या त निष्पक्ष कथन दुवाले त नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय नापा थिथि समिति या त महानगर पूर्ण कथन ग्वालियागु बचाउ पङ्का दिगु दुसा छानबिन सैगु सुझया लिदंसा मागु कथन भिङ्केगु भाला कुबिगु थ्वाथ्विका तगुदु महानगर आत्मा दह यामा नेपाली या छेजया त मानवीय ग्वाली ललहागु धागुदु अध्ययना नेपाली या छेजया दुजया त लजगाया वाता वेकया सन्तान या त ठेवा मायाको शिक्षा विगु विशेषण कार्यपालिका या वैगु बैठके विधि सम्मत कथा कोछिगु प्रवक्ता मानन्दरन जानकारी ब्यादिल महानगर वैगु दिने थुज्यागु झाका लिसकया मबिके त नेपाल सरकार नापा समन्वय सहकार्यसँग थुज्यागु झाका ढङ्कीको विशेष मनु मसिकेता हो बालागु कुतया विकास सेना छेला बुलाइ या त तयार जुयागु नेतना तगुदु सर्लाइया गोडैता नगरपालिका 10 सिसौटिया स छमालियाम थगुए मे पेटर होला मि तगुदु सिसौटिया या पी निदुमा विवेक मण्डल छे सोया अथे निसो मिटर तापाको दुगु थासे शरीरे पेटर होला
थगुम हे मि तया तगु जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाय प्रवक्ता नापा डिएसपी वेद प्रकाश वेद प्रसाद गौतममा जानकारी ब्यादिल। प्रधानमन्त्री वरेन्द्र शाह ऊर्जा क्षेत्र नगर नेपाल या आर्थिक रूपान्तरण लजकाया सिर्जना औद्योगिकरण व हरित विकास महत्वजाको लिदंसा जुगु ध्यादिगु दु स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक तेगु संस्था इपान्या दुजपी नापाम हिगेसिया दरबारे जुगु सहलया जुले प्रधानमन्त्री शाह नेपाया निर्यात व्यापार प्रवर्धन ऊर्जा लागया आल्या खभाला दैगु ध्यादिल वेकला नेपालले ऊर्जा उत्पादन व प्रवर्धन लागया वोगु हाठ्या व वाटा थे जागु लागा इपान लोङ्गु विषय त नेपाल सरकार आपल दुनोलिसि सोयाचनाको ध्याय दिला इपान यथास विद्युत खरिद सम्झौता पिपिए या सहजीकरण दिना चोङ्गु आयोजना त हिज्याकेको विशेष प्रसारण लाइन व ग्रिड एक्सेस या हाठ्यान हङ्के त वन वातावरण व जग्गा प्राप्ति नापाया प्रक्रिया सरलीकृत यायता अनुमति पत्र नवीकरण सहजीकरण विद्युत व्यापार निजी लगाया बोती नपाया विशेष सहल जुगु ख खुकुरी के का दिप्रुङ चुई चुम्मा गाउँपालिका एक यामखा दुमा मोरिया या सुई च्याद दुमा ध्रुव अधिकारी सी धुङ्कानी हटिया डोपस छखाए छेया पि सोमासित चुङ्गुदु छेया थिथि कथया कचौ या विषयता कया बिहिबार खुकुरी ख अधिकारी सी धुङ्कानी वे थासे चुमा ङे हेद दुमा तिलक बहादुर सार्की वे कया कला ङे निद दुमा भोटी माया सार्की व निद दुमा सीता सार्की जोङ्गु ख तिलक बहादुर याता झाँका जुइसात जोङ्गु खसा वे कया कला व म्याता शुक्रबार जोनागु जिल्ला प्रहरी कार्यालय सूचना अधिकारी नापा प्रहरी निरीक्षक निराजन बस्नेत जानकारी ब्यादिल। सूचना तथा संचार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमल सिन्हा गोरखापत्र संस्थान र सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था या लियोन दुगु दक्षिया लेखा परीक्षण वैकु पुस मसान्त दुने पुङकिगु थयादिगु दु इलेह लेखा परीक्षण पु वङ्के मफु गुने सरकारी निकाय वित्तीय अनुशासन सेवा प्रभाव बजेट कार्यान्वयन तपेङ्क लिचो खने दगु नेथना दिशा वैकल सार्वजनिक संचार संस्था त्यता उत्तरदायी व्यवस्थित देखे त लेखा परीक्षण या त आप्ला थ्या बी त उजाम्बिया दिल। पशुपति लागा विकास कोष पशुपति क्षेत्र खे साउने सोमबार या तयारी न्याकगुदु जग या मु भट्ट भण्डारी कोष या सञ्चालक परिषद या दुजपी व कोष या पदाधिकारी दति वैगु साउने सोमबार विशेष व्यवस्थापन व तयारी नीति बैठक चोङ्गु खसा तयारी कथन थोए असार 27 गते शनिबार निचे निथ बिहि सुथेसिया इले पशुपति लागा सफाई या गुजिया नापा न्याकगुदु। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय ए लेभल सिबिएसई आइबिपी आइबिडिपी विदेशी शैक्षिक ज्याचो मन्त्रालय अनुमति मकाका सञ्चालन यागु शैक्षिक संस्था जति कारवाही यागु ख्यासो बिगुदु वङ्गु बुधबार मन्त्री परिषद विशेष विशेष ना यहाँका चोङ्गु शैक्षिक ज्याचोतेगु गुणस्तर भिङ्केगु नियमन या त अझ लिचो लाकेगु विदेशी शैक्षिक ज्याचो न्याकेताओ नियमन नियमावली 2083 स्वीकृति आयो म मन्त्रालय कानुनी व्यवस्था छेला बुल्या छाकगु ख शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय उपसचिव कृष्ण चन्द्र पोखरेल छु शैक्षिक संस्था मन्त्रालय अनुमति मकासे थुज्यागु ज्याचो न्याका चोङ्गुलि कानुनी व्यवस्था विशेष हान जानकारी याकागु कना दिल मन्त्रालय अनुमति मकासे विदेशी शैक्षिक ज्याचो यहाँका चोङ्गु शैक्षिक संस्था विशेषण जानकारी दुसा सुनु दिने चोया मन्त्रालय त सूच बिता सफु दैगु सकल निकाय दथ्यो इनाफियागुदु। सर्वोच्च अदालतले वैगु साउन 1 गते निसि 11 गते तक नियमित कथा सुनवाई मुजुइगु जुगुदु दपतिका आर्थिक दे लगत लिच्छा त नियमित सुनवाई दिगु कुत जुया वया चोङ्गुले नियमित सुनवाई साउन 11 गते निसिएन जक्क जुइगु सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन प्रसाद कोइराला जानकारी ब्यादिगु ख सरकार
दक्षिण पूर्व या कम्बोडिया म्यानमार लाओस थाइल्यान्ड सीमा लगास अनलाइन स्क्यामिङ लापी च्यास सुई खुमा नेपाली यता उद्धार यनागु धागुदु परराष्ट्र मन्त्रालय मिगो गोसागुको नियमित प्रेस ब्रिफिङ मन्त्रालय प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल कम्बोडियासँग गुम म्यानमारसँग सचिव झिन्सोमा लाओस च्यामा थाइल्यान्डसँग खुमासित उद्धार यनागु धागुदु दूतावास मध्यक इनापे कम्बोडिया सरकार भिसा अवधी या इले चुनाचौ पि नेपामी या भिसा शुल्क व जरिवाना मिनहा याग विशेष सलना पान जुगु मन्त्रालय धागुदु मन्त्रालय नेपामी मनोतेत अफुगु कथ लिचो लाकु से राहदानी सेवा लल ह्यागु आज परराष्ट्र मन्त्रालय व मन्त्रालय कथन दुगु राहदानी विभाग प्रतिबद्धता नापा फङ्कगुदु लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय वैगु आर्थिक दुई हजार 1983-84 नीति पी गुगु करोड चे च्यागु लाख ढेवा बराबर बजेट नीति व जहाजो स्वीकृति आगुदु शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री नापा विश्वविद्यालय सहकुलपति सस्मित पोखरेल नायसुस मेहसी अन्तर्वार चुङ्गो बैठके विश्वविद्यालय आर्थिक व प्रशासनिक कथा भिङ्किएको थिति जहाजो आन्तरिक आय वृद्धि व वित्तीय अनुशासने कागु लभ या विशेष जानकारी याका दिगु खसा बैठके सहकुलपति नापा मन्त्री पोखरेल विश्वविद्यालय थगु मुख आज कथा बौद्ध शिक्षा बौद्ध दर्शन दर्शन बौद्ध अध्ययन केन्द्रित जुया शैक्षिक ज्याचो न्याके मागुली ब ब्यादिगुदु सरकार संघीय संसद सांसद पिसन हुनेगु जनसरकार या न्यास व पङ्ग जेङ्केको प्रगति स्वापु दुपी सांसद पित फोन याना जानकारी याको व्यवस्था छेलाबुल्या हगुदु प्रधानमन्त्री व मन्त्री परिषद ज्याकुई जुगु सलासन प्रधानमन्त्री राजनीति सल्लाहकार असीम साहत ज्याको व्यवस्था यानागु जानकारी ब्यादि गुह देशम पिनेया बुख स्पेनिया दक्षिणी अन्डालुसिया अल्मेरिया प्रांत या लस ग्याडोर्स लागा मी छोबले मोतिना झिम्पेमा मनुष्य गुदु अन्डालुसिया या आपतकालीन सेवा आपला तापक्रम हो आर्द्रता हो आपला तस्क फे वोगु व जङ्गली जङ्गल पाखे मी छोगुली थो झाका जुगु थागुदु भारत दक्षिण राज्य केरला चलाउना सिपिनी गुल्या हेमा चेङ्गुदु केरला या वायनाड जिल्ला या कल्लाडी दुगु मिनाक्षी तालिक वाया हुने चलाउङ्गु ख आकाशया जानकारी बेल्जियम याता बुका स्पेन फिफा विश्वकप सेमी फाइनल दुहाङ्गुदु अमेरिका लस एन्जलस स्टेडियम थौ चाने जुगु ढेन्डेम्बला अमेरिका लस एन्जलस स्टेडियम हिग चाने जुगु ढेन्डेम्बला बेल्जियम या निग गोल स्पेन यागु ख बेल्जियम छ गोल लिस बिगु खस स्पेन सेमी फाइनल फ्रान्स नफा मिता फाइनल थ्या देखे गु कुत यागु ख मौसम या जानकारी थौ देया हिमाली लागा भचा थासे व पहाडी लागा आपलन थासे वा वैगु चपु कुवा वैगु धागुदु दे यात्राई लागाना न न्याना वा वैगु धुकमा यागुदु कोशी बागमती गण्डकी कर्णाली प्रदेश पहाडी लागा सुदूर पश्चिम लुम्बिनी नापा तराई लागा छगुनीको थासे मध्यको वा वैगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग धागुदु मेघ सोनी गले नि च्यागु फुटी सोङ्गु डिग्री सेल्सियस तथिको आज लुगु धागु खसा थौँ सुथे यहाँ सोनी गले यहाँ त इजु या गुगु मिनेटे लुया वोगु सूर्य शनिलाई नेता इजु या च्यागु मिनेटेबी रेडियो नेपाल नेपाल भाषा समाचार पुवन चिताईले नेपाली भाषा समाचार निना दिशा शुभ

लसो प्रफुल्ल तिनी मञ्जुश्री सम्मत 2862 तालु बेलबोलाला छेपाङी चुइसेढु विक्रम सम्मत 2083 साल असारलालाङी चुइसेङिस काम्रे शनिबार चु रेडियो नेपाल हिन्ना तामाङ साङ्गुरी राङ्दा डेनमुला गा सूर्य मोक्तान विपद सम्बन्धी घटना गुनासो

सिंहमानखापा विपद टोल फ्री नम्बर 11 ब्लडखाङलाई अनुसार विपद सम्बन्धी सूचना समस्या गुनासो थियो सुझाव दा युलबासे दारेम राङलान जोङ्याम आपतकालीन केन्द्री प्रत्यक्ष सम्पर्क लासेपिनबारी खाम्बासे उद्धार समन्वय थिएन सेवा प्रवाह अझ प्रभावकारी तबारी खाम्सेलामुला विषय पाङबामुला चुनन गुङ्री बागमती प्रदेश सरकार से विपतला पूर्व तयारी लाबारी नेपाली सेना नेपाल प्रहरी थिएन सशस्त्र प्रहरी बलदा करोडी लाख ब्लिची सिङ्गिस बिमा लामाला उद्धार लबा से थिएन उपकरणका दे पिनबामुला ग्रेन ब्लोन थिएन ब्लोन सिङजाङला गेदिमरी तिनी सिङमा विशेषज्ञ खोरी प्रदेशला ग्रेन ब्लोन इन्द्र बहादुर बानिया से नेपाली सेना दा लाख निश्चु सिङ्गा तुङ ढुचु सिङ्गी नेपाल प्रहरी दा लाख गाँचुई से ब्ली थिएन सशस्त्र प्रहरी बलदा करोड गिक बिमा लामा ला पूर्व तयारी ला से दोन शिवमला चुनावी बागमती प्रदेश सरकार से सवारी दुर्घटना तबाली छ घाइतेला मानलाबारी खम्बा सोबारी सरकारी अस्पताल ट्रमा सेवा सिंह ट्रमा सेन्टर ला क्षमता लेना लबा थेन तोबा थिम सोबारी बांग्ला सेलमला विषय पाङबा मला

उजुरी रिपोर्टमा समिति से तिनी गोर्खेक सार्वजनिक सूचना छिसी संवैधानिक सिंजाङ से सिफारिस लगा दिँदा नियुक्ति लबरी ठिम मुलाकी आरे बिवाला ठोस आधार प्रमाण अथवा सूचना मुसम चुइरे नाङ्ग्रिस उपसमिति रि उजुरी पिनमारी मोहिजेन लबहिन्ना सूचना अनुसार निर्वाचन आयुक्त रि सिफारिस लबा मानबहादुर कार्की मोरङ थिएन निर्वाचन आयुक्तका दरि सिफारिस लबा डाक्टर राजीव सुब्बा याम्बू थिएन गुरुप्रसाद वागले ओखल ढुङ्गाला विरोध रि प्रमाण नछ्याम्रे नेपाली अथवा अङ्ग्रेजी गैरी उजुरी पिनमारी खामसला तापमला उजुरी लामा उजुरी लाबा मेला मिन थर ठेगाना फोन नम्बर थिएन जोङ स्पष्ट बितोसेला तापमला उजुरी पिनमा आधार थिएन प्रमाण वा कागजपत्र ल प्रतिलिपि नन् थानबारी समिति से मोहिजेन लापमला काइब्लन बालेन्द्र शाहला चोहबाङरी चुनुन असारलाई चुई सिङ स्कुनु टिबा संवैधानिक सिङजाङलाई चिसाङसे मेन्द सुम्दा नियुक्ति लाबरी सिफारिस लाबा निर्णय लाबमुबा पूर्वाधार विकास ब्लोन खाङसे निर्माण थुम्ला छुङलाबारी इजाजत पत्र किन्सी नवीकरण आलाबा गोर ब्लिचुसे ब्ली फर्म थेन कम्पनीलाई इजाजत पत्र स्वत खारेज ताब मुला विषय पाङबमुला पूर्वाधार विकास ब्लोन खाङला निर्माण छुङ प्रवर्धन शाखासे निर्माण छुङ ऐन 2055 अनुसार नोर्दिङ 2082-83 2082 साललाई चैत मसान्त नङ्ग्री अनिवार्य इजाजत पत्र नवीकरण लादो बठिम मसाइनन् थे दुई नाङ्ग्री नवीकरण आलाबा गोर ब्लिचुसे ब्ली निर्माण छुङ खेन देला इजाजत पत्र स्वत खारेजी तब मुला विषय पाङ बहिन्ना ब्लोनखाङसे थेनुन ठिम अनुसार ब्लोनखाङला लोनखाङ स्तरले चुनुन असारलाई चिसिङ स्कुनु लाबा निर्णय अनुसार सूचना छिसे जानकारी पिन बहिन्ना सानम रिथेन वातावरण रोन गीता चौधरी से लासोम नाङ्ग्री पशु बदशाला थेन सिया जाँच ऐन 2055 कार्यान्वयन नभरी निर्देशन दोन्सेपमला याम्बो उपत्यकालाई स्थानीय तहकदला ग्रेनपो थेन मुन्बेका थिएन लाबा काठुरी लेङ्गमा थान्सिबान ब्लोन चौधरी से प्रक्रिया तिसी प्रभावकारी टिम कार्यान्वयन नभरी निर्देशन दोन्सेप हिन्ना ब्लोन चौधरी से उपभोक्ताला लुइथेन प्रत्यक्ष सम्बन्धित ताम ताबसे स्वच्छ गुणस्तरीय थेन परीक्षण लाबा सिया चाबारी ब्याङ्क तबै हिर्वाला याङ ताम्दा सुनिश्चित लबरी टिम कार्यान्वयन लानु तोप मुला विषय सुङ्छु बहिन्ना चुरानुरासे सानाम रिथेन पर्यावरण ब्लुन गीता चौधरी से सानाम थुम्रे कृत्रिम अभाव ठुङ्न लाबा चाबसे छुम्बा साई लेन लाबा राङमा गिए लाबा म्याङसाम

एसएमएस थैन इमेल रङमा माध्यम ज्ञान ग्राहकदा नियमित जानकारी पिनभरि खाम्बा ठिम्सो भरिनु निर्देशन पिनमा मुला बागमती प्रदेशला रिमठिम थेन पर्यटन ब्लोन सुरेश श्रेष्ठ से पर्यटकीय थुमथमेल से नेपाल दा मुख्युल्डिन होसेन लाबामुला विषय सुङसे बमुला थमेल पर्यटन विकास सिंहजाङ से तिनी सिंहमा सुमचुई छ थेन सुमचुई से गिक छ दिन्छन् गेखोरी लिङ्बु थान्छिवान ब्लोन श्रेष्ठ से नेपालला पर्यटन थुमला विकास लबारी थमेलला योगदान लामन महत्त्वपूर्ण बला विषय सुङसे बहिन्न ब्लोन श्रेष्ठ से बागमती प्रदेश से पर्यटन प्रवर्धन थेन पर्यटन पूर्वाधारला विकास लबारी नोर्दिङ 2083-84 दा अर्ब ब्ली बजेट फेबमुला बिसिनन सुङसे बमुला याम्बुला सुकुम्बासे दिन्थे मेदा अस्थायी रूपरी थानमानखाबा कृतिपुरी मुभा राधा स्वामी होल्डिङ सेन्टरले भालुवाङमाली छ सुकुम्बासीका दे समस्या परप्ता बमुला सरकार छ चुइसे घारे नाङ्री स्थायी बस व्यवस्थापन लसेल मुला बिसी पाङमाली छ लासुम थाल्से जिन्छैनन् व्यवस्थापन लबारे आखम्बा थिन सुरक्षित ग्लारी थानबारे आखम्बा विमान पीडित गर्दैछ गुनासो लाबमुला तिलबम बुनाला चुइसे घिङ यामाली छ होल्डिङ सेन्टर

नेता अनिवार्य रूपमै इजाजत पत्र नवीकरण कृषिवस्त्रक बितल अखार 17 गतेक निर्णय अनुसार सूचना प्रकाशनका जानकारी देलक अछि। काठमाडौँको सुकुम्बासी परिवारकै अस्थायी रूपमे राखल गेल कीर्तिपुर स्थित राधा स्वामी होल्डिङ सेन्टरमे बाढ़ि पछिलापर ओहिठामक आश्रित परिवार सभ समस्यामे पड़ल अछि। सरकार 15 दिन भीतर स्थायी व्यवस्थापन करबाक प्रतिबद्धता जनौलाक बावजूद 3 मास बीत गेलाक बावजूदो व्यवस्थापन नहि भेल आ असुरक्षित स्थान मे राखल गेल कैद पीड़ित सभ असंतुष्टि जनौलक अछि। रोहतक जिला मे लगभग 38,500 हेक्टर जमीन धान रोपबाक योग्य भेलाक बावजूद एखन धरि 6,160 हेक्टर मे मात्र धान रोपाइ भेल। जिला स्थित कृषि ज्ञान केन्द्रक कार्यालय प्रमुख सुरेन्द्र कुर्मी जानकारी देलनि। एखन धरि लगभग 45-50% रोपाइ हेबाक चर्चा करैत ओ पर्याप्त वर्षा नहि भेला सँ लगभग 16% रोपाइ भेल उल्लेख कयलनि। व्यक्ति डायन कहियो नहि होइत अछि। राष्ट्रीय जागरण प्रतिष्ठान नेपालक आयोजन में महोत्तरी गौशाला में डायन कुप्रथाक नाम में होवला हिंसा विभेद तथा मानव अधिकार उल्लंघन अंत करबाक उद्देश्य चेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न भेल अछि। अखार 10 गते सँ शुरू भेल अभियान धनसा आ रोहतक होइत महोत्तरी पहुँचल अछि। अभियान अंतर्गत डायन आरोप सँ प्रभावित समुदाय में शिक्षा जनचेतना तथा अंतरक्रिया कार्यक्रम संचालन

मारी नगरपालिका आ नेपाली सेना श्री नया गोरखगणक संयुक्त सहकार में एहिठाम निर्मित प्रधान सेनापति काजी अभिमान सिंह बसनियात के सालिक अनावरण नहीं कैल गेलाक संगे पार्क पूर्णता पौलक अछि। नेपाली सेनाक निरंतरताक पहल खोज अनुसंधान तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिक दृढ़ इच्छा शक्ति कारण एहिठाम निर्मित सालिक आ पार्क पूर्णता पौलक अछि। नेपाली सेना मध्य प्रतिमापति उप्रति विष्णु कुमार खड़का महान योद्धा आ सोमेश्वर गढ़ी विजय के नायक बसनियात के सम्मान श्रद्धा आ स्मरण स्वरूप पूर्ण कदक साली अनावरण कयलनि। नेपाल राष्ट्र बैंक अंतर्गतक बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग बैंक तथा वित्तीय संस्था के स्वयं संग रहल निष्क्रिय खाता के न्यून करबाक संबंध में कार्य योजना बनाकर 2083 साल पूस मासान लागू कयल जेबाक निर्देशन देलक अछि। राष्ट्र बैंक इजाजत पत्र प्राप्त क वर्गक वाणिज्य बैंक ख वर्गक विकास बैंक आ ग वर्गक फाइनेंस कंपनी सबके शुक्र दिन जारी कयल एकीकृत निर्देशन 2082 में संशोधन तथा परिमार्जन क निष्क्रिय खाता न्यूनीकरण करबा दिस आवश्यक काज आगू बढ़ेबाक

सहज आ प्रभावकारी बनेबाक लेल गृह मंत्रालय विपद हॉटलाइन नंबर 1234 के जिला स्तर धरि में विस्तार का संचालन अनलक अछि। मंत्रालय द्वारा जारी कैल प्रेस विज्ञप्ति अनुसार इससे पहले केंद्र सा मात्र संचालन होते आयल विपद टोल फ्री नंबर 1149 के रूपांतरण का 1234 नंबर संचालन

अलि सार्वजनिक कयलक अछि। संस्था सब द्वारा जारी कयल गेल संयुक्त विज्ञप्ति मे श्रोता लोकनि सब संगीत सृजना मे AI कोना कतेक प्रयोग भेल अछि आ जानकारी चाहला पर उल्लेख करैत ओ नया लेवल सँ पारदर्शिता कायम करबा मे सहयोग पहुँचबाक विश्वास व्यक्त कयल गेल अछि। नया प्रणाली अंतर्गत दू प्रकारक लेवल प्रयोग कयल जायत। पहले AI द्वारा सृजना कयल गेल लेवल ओहन सामग्री मे प्रयोग होयत जाहिठाम गीत वा रिकॉर्डिंग के अधिकांश वा सम्पूर्ण सृजनात्मक पक्ष कृत्रिम बुद्धिमत्ता सँ तैयार कयल गेल अछि। एहिसँ आ एहिमे AI सम्पूर्ण रूप मे सृजित गीत AI द्वारा तैयार कयल गेल मुख्य स्वर आ प्रमुख वाद्य ट्रैक से

जसरी एक मछुआरा यहाँ आपनो अज्ञानता को कारण तित्रा अनमोल हीरा बाट वंचित भयो र आफूलाई अभागी ठान्न थाले।